हारे जन, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन के, अपना गुण ना गवावे। अपा पहला बचन किया भी जन सानू सारे नू कहिंदे ने, पर जिहड़े उहदे गुण गाउंदे ने उहनां नू हर जन कहिंदे गुरबाणी च। जिहड़े गुण गाउण लग पैंदे हरी दे, अज दा तुसीं वाह वाह कर रहे हो, वाहो वाहो करें से जन सोहणे, उहनां नू सोहणे वी कहा। तिनको परजा पूजण आई, वडभागियां वाहो वाहो मूहों कढ़ावे। वाहिगुरु कहना सौखा नहीं है, निकलता नहीं मूहों, पर जिहड़े जिन्हां दे मुखों कढ़ा दिंदा वड्डे भागां वाले, बहुत वड्डे भागां वाले जिहड़े बोल दिंदे वाहिगुरु, ये कहना बहुत औखा। तां ही गुरु नानक साहब ने कहा ना, आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखण औखा वाहिगुरु कहना औखा साचा नाम। पर जिन्हां नूं भुख लग जाती है साचे नाम की लागे भूख, वह फिर जपी जाते, वह फिर दिन रात जपते, दिन रात अराधो प्यारे निमख ना कीजे ढीला। हर हर नित जपियो जियो, हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु लाहा खट्यो दिहाड़े। उन्हां नूं हर जन लिखिया सतगुरां ने, ते बड़ी प्यारी गुरमत जीवन जात समझाई है। गुरु प्यारे हो, जदों तुसीं जपोगे ना, तो जिन्हां नूं ज्ञान नहीं हैगा उन्हां ने तुहानूं कहना वा भी रब बोला, कोई इन्ना उच्ची उच्ची जपण डे रब बोला, बोला रब नहीं गा, साडा मन ही नहीं सुनदा, माया धारी हो गया, फुरने लई जांदा। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द सुनदा नहीं। वेखो इत्थों बोलदे आ, कन्न किन्नी क दूर है, उत्थे भी नहीं सुनदा, वो सोचा ची माया धारण करी बैठी। तां ते इन्ना जोर लाउणा पैंदा, पर जे सुणे ते फिर जोर लाउण दी लोड़ ही नहीं, सुन लग पऊगा। इहदे कन्न जिहड़े सही हो जाणे जदों तुसीं इहनूं सुणाई गए, ते उह तुहाडी निंदा करनगे, पर तुसीं अपना यह गुण नहीं छड्डणा, तुसीं सिमरन करी जाणा। जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई निंदिया करे तो तुसीं अपना गुण नहीं छड्डणा। आ गाउणा वाहिगुरु, कबीर साहब की बहुत निंदा होई, कबीर साहब भी बहुत जपदे होंदे उच्ची उच्ची राम राम। वो मुसलमान सीगे, ते हिंदू कहिंदे हे राम क्यों कहिंदे आ, ते मुसलमान कहिंदे हे अल्लाह क्यों नहीं जपदे। कबीर साहब फस गए, पर उन्होंने छड्डिया नहीं गा, फिर छड्डिया नहीं उन्होंने, उन्हें कहा निंदी जाओ। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, है ना, काहो कबीर जन निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। कहते निंदा तो साढ़े कपड़े धोंदे। इसे भी आ सतगुरां ने समझाया भी जे तुहानूं कोई जपदिया कवे भी ना, तो तुसीं ध्यान गुस्सा नहीं करना, अपना गुण नहीं गवाउणा, तुसीं जपी जाना वाहिगुरु।

जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापै जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म ग्रंथा से भगत भले जन नानक जी।

अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे वो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्तन को बल मोबद कियो कट कट के अंदर की जानत पले भरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशन्न घट घट गे बट पट की जन्न जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तर्त तब देहे अपारा जब आकर्ख कर्त हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं जेते बदन सृठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब हीते रहत निरालम जान।

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न भव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुप्पा अंड जेर से तज कीनी उत्पज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्रे कैठा सगरी सुष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तुचता विशरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हावाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शबय सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोखते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लो उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता श्री सुजप पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत भल पाव सोई दुखना दसे व्यापद कोई अड़ल सुने गुंगो याहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकटना दन्नर के रहा और जो याकी एक बार चाओ पाई को कह चौ पाई सम्मत सतरह सहस पुणिज अर्ध सहस पुन तीन कह जय भाद्र सुधी अष्टमी रबारा तीर्थ सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अबजू दोहरा दा जान कर दास पर कि जय कृपा अपार आप हाथ राख मोहे मान क्रम बचन विचार चौपाई मैं नाम गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबूना।

अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जन दुई एक है, बिबिचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आए स प्रभु को भयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए, कब बाज दोहरा। ठाट पयो मैं जोर कर, बजन गा सिर न्याए, पंथ चला तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ त्याए हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देहे मो, कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रावसस क्रूर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपाई। जो ये कथा सुने अरगावे, दुख पाप ते निकट न आवे, बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई। समत सत्रह सहस पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन, त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, पूर परी लहो लेहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तार, सद्रव तीर्थ रंग, श्री भगवत पूर्ण कियो, रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साद असाद जानो नहीं, बासुबाद विवाद, ग्रंथ सगल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कहूँ आंख।

थाल बिजतिन वस्तु पहियो सात संतोख विचारो आमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जेको खावे जेको पुंछै तिसका हुए उधारो ए वस्त जी रह जाई नित नित राखुर तारो तम संसार चरण लग तरिया

0: गुरु प्यारी सा संगत, सदगुरु सच्चे पातशाह ने अपार बख्शिश कीती है। मेहर पर आसीस ते आथर रख के आप जी रब रूप संगतां दी आसीस दा सदका अपने दर ते सेवा लई है। इसे तरह सतगुर बख्शिश करन, आप सारिया संगतां आसीस बख्श दे रहन। तीन दिन होर आप जी दे चरणां विच सेवा रहिंदी है, वह करके अगले पड़ा ते फिर हाजिर होना है। सारी संगत आसीस बख्शियो, भुला चुका दी खीमा गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद सिंह जी आप जी नूं पितृबाणी शब्द कीर्तन लाइ जोड़े सन। भाई जसपाल सिंह जी, श्री पौंटा साहब जवाल दा कीर्तन जथा, भाई सब जथे दा बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई सब भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी जुरीदागी श्री दरबार साहब जी का कीर्तन जथा आप जी कीर्तन राय जोड़नगे। उन्होंने पासों प्यार से सरण करो जी। आने वाले एतवार को धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के संपूर्णता के सारे हैं। इस संबंध में सवेरे दोपहर दे शाम के दीवान सजनगे आप जी ने हाजरी भरनी है जी। ते नाल ही संतां महापुरशां की यादा में कल श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होणगे, एतवार भोग पाए जाणगे। इस संबंध में दीवान सज रहे हैं आप जी ने हाजरी भरनी। ऐतवार सवेरे निशान साहब की चोला साहब की सेवा होगी, 9 बजे के करीब आप जी ने हाजरी भर के सेवा करके लाहे प्राप्त करनी जी। और मंगलवार 1 तरीक न धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है, इस संबंध दीवान सजनगे आप जी ने, जो कि श्री अखंड पाठ साहब की संपूर्णता मंगलवार को शाम को 5 बजे होगी। 5 बजे तो बाद कीर्तन दरबार सज रहे हैं आप जी ने हाजरी भर। आहुन कीर्तन नाल जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सहु पाव काल कलेह तन माह मिटाव सिमरौ जास विसंपर एक नाम जपते अगंते अनेक वेद प्राण सिमरत सोद आखे हर कीने राम नाम एक आखे हर किनका एक जेह जी बसावे ताकि महिमा करी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानकुन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त ना कह मन विश्राम रहाओ प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कह सिमरन दुख जम नसै प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कह बिगल न लागे प्रभ कह सिमरन हण दिन जागे

सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जब तब पूजा प्रभ कै सिमरन बिंसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

चले। जह मुस्कल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाव पर हरे। गुरमुख नाम जपह मन मेरे, नानक पाव सूह कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निह तरै। अनक माया रंग

छूट तनहि कोट लाख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आय सिंघारे हर का नाम तदकाले उधारे अनक ज्यों जन्मे मर जाम नाम जपत पावे बिसराम।

बारिया बार विवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पहाऊ पर साग सैन मुख्या प्याऊ बैठ कौ दहन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्स लेहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धारु पर सुख बस है सोत प्रात मीत बंता संग हस है जिह प्रसाद पीवे सीतल जला सुखदाई पवन पाव के मुला जिह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने अस्त पाव करने तरसना तिसे त्यांग वर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रव्यापे आदि अंत जो राखन हार तिस स्यो प्रीत न करे गवार जा

माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विक्राल मिथ्या राथ हती असब बहुतरा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता

पर लोभ लुभाव मिथ्या तान नहीं पार पुकार मिथ्या बाह लेद पुकार भिन भूजे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आर जा साच बिना कह उत सुचा बिरथा नाम बिना तन अंत मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन मृत

स्नेही जेह प्रसाद राउला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद रे सगल सिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कै जेह प्रसाद रे को ना बहुते मन सास साह सिमरह प्रभु चे जेह प्रसाद ने पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भक्त करे जेह प्रसाद भूखन पहरी जय मान तह सिमरत क्यों आलस की जय जेह प्रसाद असव हस्ते सवारी मान तेह ब्रह्म को कबहु ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सद तिसह त्याई तिसह त्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै

प्रभ नेरा साध संग सब उतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माह समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले

जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रंगाल जय धारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाहि मान ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन पहनान जन प्रव्याम करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुम रास ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कस बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी

ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत ब्रह्म ज्ञानी अभुत आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म काव्यता ब्रह्म ज्ञानी एक संघ हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ बाल बाल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आम परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कसे न जाय दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी काम तरह पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

परवान। अपने दास कहो आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्मे उदास है सी जुगत, नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म ही धावे, जीवन मुख सुख हावे।

आवे सो ही करे। अनजान भिख्या महर ते अनजान भिख्या महर ते, दे जानता अपने आप बते, पर मैं भूला दह दह तावे निमुख माहे चार।

क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की उतरवाल, कब हो बह बड़ राजा, कब हो पेखारी नीच का साजा, कब हु अब कीरत मह आवे, कब हु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राख तिव ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कब हुए पंडित करे बख्यान, कब हु मौन धारी लावे ध्यान।

समहंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मेटे अभिमान सो जा नानक दरगे परवान कोट कर्म करे हम तारे श्रम पावे सगल।

कहो नानक दागे निर्मल सोए। जब लग जाने मुड़ते कछ होए, तब सिखाओ सुख नाही कोए। जब जाने मैं कछ

छुट्टै। सहस खटै लाख कौठ धावे, तृपत ना आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, नह तृपतावे खाव खाव मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावण आपे आम, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावण करने हार, कह हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप। आप प्रभु सोए जो किस कीन हो, सो अपने रंग सब ते दूर। सब हूं कै संग बूझे, देखे करे विवेक। आप हेक आपे अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए। नानक सद ही रहे आसमाए।

ब्रह्म। एक है आप नहीं काश परम सहस सियाणप, लया न जाइय नानक ऐसा गुर बिडभागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गात निर्मर रीत। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की धरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्मपतियाने।

परम पद पाई। इस ते उपर नहीं विचार जाके मन बसया अहंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदर पूजे गुर के पैरे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साथ संग मिल कर हुनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत् करहु विचार दुर्लभ देह का करू उधार।

बहु जाय। सात व्यापार करहो व्यापारी दरगन बेखेप तुम्हारी कटे रख मन माहि नानक बहु न आवे जाय। तेहते दूर कहाँ को जाय प्रे राखन हार ते आए। निरपाव जपे सगल पाओ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभु राखे तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवत सुख।

संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनहे शुभ बचन सर्वे आपी राम संग रचन।

कहे आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तलै समावे इसते हुए सुना ही बुरा उरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू देव निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोता।

युग एको वेश एक दू जी भाओ लाखों है लाखों में लख बीस लख लगेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए त्राहे पद पबड़िया चढ़िया हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

माथे पतंगन माल मलाएंगे, श्री पर श्री भगवान कृपा बिंद्याग जहान निदान चलाएंगे, वीर पार बड़े बरियार बेचारे सार की धार मशैया, तोर दे समलंद वासन माते गजान के माल मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़ नहार सुबाते चक चार लवैया, साहिब श्री सबको सरनायक जाच करे एक सो एक दवैया, दानव देव रिंद साजर भूत भविख भवान च पाएंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं फल ही पल मैं सब थाप तपाएंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन गे बुंज खपेंगे, साध सम प्रसन्न फिर जग सतर सब अवलोक छपाएंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरात मंजाउन तरों को राज करेंगे, कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विषण सची पातंत फसे जम फास भरेंगे, जेना श्री पद के प्रस है भक्त तेर नाल फिर ना देह तरेंगे, कह पहु जो दो लोचन मूंद के बैठ भक्त ध्यान लगायो, नहात फिर सास समंदर लोग प्रलोक गवायो, बास क्यो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, साज कहाँ सुन लेहो सबै जन प्रेम की ओत नहीं प्रपायो, काहुल पाहन पूज तरयो सिर काहुल लिंग घरे लटकायो, काहुल कर अबाची दिशा में काउ पशाह को शीस निभायो, कहु बतान काउ पूजत है पास कहु मृतान काउ पूजनता आयो, कूर क्रिया उर जाओ सब ही जग श्री भगवान को भेदना पायो, कहु कहु बतान काउ पूजत है पास कहु मृतान काउ पूजनता आयो, कूर क्रिया उर जाओ सब ही जग

चरण शरण कह। लोचन अमोल गुरदर्श अमोल देखे, सरवण अमोल गुर बचन धरण कह।

ब्रह्म सारियां तो उपर है, श्रेष्ठ है, ते परमात्मा दा अंत नहीं आता। श्री माण भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी ने गुरु खालसा जी एक कवित बड़ा प्यारा कलमबंद किया है। भाई साहब जी कहते ने परमात्मा तो बेअंत है ही है, पर परमात्मा की रची हुई सृष्टि है, उसकी विशेषता ही है। तो भाई साहब जी कहते एक तिल है, छोटा जिहा जिहनूं तुसीं तिल कहिंदे हो, बिल्कुल छोटा है। अगर उस तिल दा तुसीं थोड़ा जिहा कहोगे, हैरान होवोगे भी तिल दा अंत कोई लैना चाहे ते तिल दा अंत नहीं आउंदा। तुहाडे अंदर एक क्वेश्चन पैदा हो गया भी तिल ते है बड़ा छोटा, भी तिल दा अंत नहीं आउंदा, ये बात किहो जी है? तो श्री मान भाई गुरुदास साहब जी ने एक बेअंतता की विशेषता ही दसी है दृष्टांत दे के। कहिंदे प्रथम ही तिल बोए, धूल मेल बूट बंद है, एक स अनेक प्रगट होए संसार में। तिल छोटा जिहा किथे बीजिया धरती विच, वह मिट्टी नाल रल गया, है तो छोटा जिहा, पर उहदा बूटा पैदा होया जदों उस बूटे दियां किन्नियां लगरां को तैयार हो गई, किन्नियां टाणियां तैयार हो गई। पहला मिट्टी दे विच मिल गया, मिट्टी दे विच छोटा जिहा बूटा पैदा हो गया। जदों पैदा होया उहदियां शाखां कड़ियां बड़ियां पैदा हो गई, उन्हां शाखां नूं निक्कियां निक्कियां फलियां लग गई। एक तिल तो किन्ना वड्डा बूटा ते किन्नियां शाखां निकलियां ते किन्ने तिल पैदा हो गए, है ते इक ही सी ना। हुण इहदे तों अगां जाओ, परमात्मा दा अंत कित्थों आवेगा? प्रथम पहला तिल बोए, धूल मिल बूट बंद है, एक से अनेक प्रगट होए संसार में, एक तो अनेक प्रगट हो गया। जो तिल कढ लए, गर्म सर्दी की रुत आ गई है, फिर कहिंदे जी तिल नूं खाणा भी है। कौ लै चबावै, कौ ते तिल उदां ही चब लैंदे ने मूंह च पा के फक्का मार के, है ते छोटे जो गांह पैदा हो गए सी। कौ लै चबावै कौ खल कढ रेवरी कै, कौ करे तिल वा मलाए गुर बार में। कोई उहदा खल कढ के ते रेड़ियां ते ला दिंदा है, रेड़ियां च स्वाद आनंद लै लिया, किसी ने उदा लै लिया, बोया एक ही सीगा। कोई लै चबावे कौ खल कढ रेवरी के, कौ करे तिल वा मलाए गुर बार में। कोई गुड़ दे विच ला के ते उहदा जाके गचक खाणी शुरू कर दित्ती, उहदा वखरा आनंद लै लिया। तीजा मुल कहिंदे ने को उखली डार, उखली होंदी लोह दा, लोहे दा चट्ठू, उहदे विच तिलां नूं पा दित्ता। को उखली डार कुट तिल कुट करै, उहनूं कुट कुट के हुण ते मिक्सियां आ गईआं, पहलां मिक्सियां थोड़ी होंदियां सी, उखलियां चट्ठूआं दे विच ही उह तिल कुटे जांदे सी, अलसी कुटी जांदी सी। उहनूं कुट के बरीक करके किधरे किसे ने पंजीरी विच मिला के उह तिल खा लिया, है एक ही सीगा। को उखली डार कुट तिल कुट करै, को कोलू पीर दीप दीपक अंधियार में। ते किसे ने गुरमुखो की कीता, उसे तिल नू कोलू विच पीड़ दिता जिथे सरसों पीड़ी जांदी सी, तेल निकलदा सी वेखिया आपां, ते उस कोलू दे विच पीड़ के उहदा तेलां दा तेल कढ लिया। ते हनेरी रात होई, उसे तेल दा दीवा जग गया। आखो सतनाम श्री। एक तिल दा गुरमुखो अंत नहीं है, ते परमेश्वर दा अंत कित्थों आवेगा? देखो बोल कड्डे सोहणे भाई गुरदास साहिब जी ने लिखे ने कहिंदे

पवन पुत्र गरड़ समाना ये बराबर गरड़ पंछी है, पंछियों चो श्रेष्ठ मनिया गया है। सोरपत नारपत नहीं गुण जाना, देवत्या दा राजा इंद्र राजा, नरपत मनुखां दा राजा, नहीं गुण जाना। मेरा वाहिगुरु इन्ना बेअंत है ना, साहब जी कहिंदे उहदी वडियाई नूं कोई जाण ही नहीं सकदा, उहदी बेअंतता दा अंत ही नहीं आउंदा। इत्थे बस नहीं है।

चली पुत्री लोण की समोंदा था का लैण नाथ नाथ आपे पई पलट कह को बहन एक लोण का ढेला समुद्र च गया वेख के आवा डूंघियाई कि नहीं कह आके दसांगा ज्यो ज्यो समुद्र च गया तो समुद्र का ही रूप हो गया पानी बन गया। जेड़े जपते ने दिन रात दिन रात दिन रात जपद्या जपद्या भेद हो जाते ने फिर उन्हों तो बोल ही नहीं होंगे उत्थे चुप हो जाती है। गुरु रहमत करो वड्डिया भागा वाले हो रोजाना दे प्रेमी हो एक बार वाहेगुरु शब्द आखो तो फतेह बुला देंगे।

कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा हे मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदु सब किल विख दुख पर हरे राव गढ़ गढ़ रमैया मन वसे क्यों पाइये कित भत गुरपुरे सतगुर भेटी आए हर आए वसे मन चेता मैं तर नाम उधार है हर नामे ती गत मत मैं हर हर नाम विसाऊ है हर नामे ही जात पात जन नानक नाम तिहाया रंग रतड़ा हर

बात है, जब लग सहब प्रीत ना होए, इहो मन माया मोहया विखण सुनन ना होए, सह देख बिन प्रीत ना पुजे अंधा क्या करे, नानक जिन अखी लीतिया सोई सचा दे पौड़ी, हर को करता एक इको दीवान हार, हर एक सहज है अमर इको हर चेत धार, हर तिस बनवरण हर तिस बिन कोई नाहे, डर भरम पौ दूर कर हर तिसै नो सलाहे, जे तुद रखे बाहर घर हर जिसन हुए दयाल, सु हर जप पौ बिखम तार। श्लोक महला पहला। दाती साहब संधिया क्या चले तिस नाल, एक जा गंदे नाल है न एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी सुदाय सही।

अंदलै पूर्ब लिखिया कुमाए। पूरे भाग सतगुर मिलै सुखदाता नाम सिमन आए। सुख माणे सुख पैनना सुखे सुख विहाय। नानक सो नाओ मनो ना विसारी जित दर सचे सोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास। गुरमती आप छाणिया राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिण सब तिसका सिवत करे अरदास। सचे शब्द सुलाहना सुखे सुख निवास।

जीवत मरे हर नाम बखाने, ऐसा भगवती उत्तम होए। नानक सच सुमावे सोए महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए, पखंड पार ब्रह्म कदे न पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ न जाए। सत संगत स्यों बाद रिचाए, अंदर दुखिया दूजे भाए रिचाए। हर नाम ना चेते बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मिट ना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे सो नानक बिन सतगुर सेवे मुख ना पाए पौड़ी। सतगुर जनी ते आया से कड़ना सुहावई, सतगुर जनी ते आया से तृप्ति अकाई। सतगुर जनी ते आया तिन जम डरनाई, जिनको हुआ किरपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथे उथे मुख उजले, दर दरगे पै हर दरगे पैंदे जाही। श्लोक महला तूजा, जो सिर साई नानवै सो सिर दीजे डार। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर लै जार। महला पंजवा, बुढ़ो भुली नानका फिर जन्म मुयास, कस्तूरी के भुलड़े गुंदे डुम पियास पौड़ी। सुअर स्वै सार नाम त्याये मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। स्वै सार नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लाए छाए। स्वै सार नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। जो गुरमुख नाम जपया सो गुरमुख नाम जपया, वडभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम राध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा, वेस करी कुरूप को लखनी, मन खोटे कूड़े यार। उपर के भाणे ना चले हुक्म करेगा वार, अगुर के भाणे जो चले सब दुख दब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार, मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे कने न पाया देखो हृदय विचार, नानक साथ सुलायो सो लखनी जे रावी सृजनहार। महला तीजा, माया मुगवार है तिसदा नाउ दिसै,

निज कर वसे निज थाए, अनहद तुन्नी सद वजदे उन मन हर लिवलाए। नानक हर भगता नानक हर भगत तिन्ना कै, मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी। हौं ढाडी हर प्रभु खसम का हर कह दर आया, हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया।

सदगुरु प्रसाद री नर गर्भ कुंटल कुंडल अब जब आशत उर्द ध्यान लिवलाग मृतक पिंड पद मद नायन स एक अज्ञान सोनाग ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक बसारिया गर्भ छूड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारिया फिर पछताएगा मूड़िया तू कमण कुमत परम पागा चित राम नाही जमपुर जाएगा जन

पंच प्रगट संतापे जब तब संयम छोड़ सो किरत मत राम नाम ना आराधे उछलिया काम काल मत मत लागी तवान सगत गल बांधिया तरुणा तीज परतरै मुख जो है सर अवसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत

तुम जो नायक अश्वंतर जामी प्रभ ते जन जानी जे जानते स्वामी शरीरा राधे मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावै को राग माज चौब दे घर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरभउ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सह भंगुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपुर हर नाम सिद्ध पाई को विर

मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी सरदा पूर जग जीवन दाते, मिला हर दर्शन मन भीजे जियो।

रे बिघन न लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पतित पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन वांछित फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

सुख मांगा मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला। मोती ता मंदर उसरा रतनी ता हो जड़ाओ। कस्तूर कुंगो अगर चंदन लीप आवै चाओ। मत देख भूला विसर।

कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया केन बद मिलिया केन बद बिछुराए ए बद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए केन बद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुगता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता धन गिरहि और दासे गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो ओम में बादा गुरमुख छोटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नह कर्मा गुरमुख करह सो सो पाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख बिछुराए गुरमुख वेद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जो धावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता

वैसाख तिरण क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बछो हर साजन पुरख विसार कह लगे माया तो पुत्र कलतरना संगतना हर अवनासी ओ पलच बलच

जिस मन हर चरण निवास, सावण सरसे कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रचा सच रंग इको नाम आधार, बिख्या रंग कूड़ा बिया।

अंत जस मन वसै नारायण सो कहिय भगवंत जी की लोचा पूरिय मिल स्वामी कंता।

तिस बलियार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा एक पगवा वेश कर फिर है जोगी सुनयासा अंदर तृष्णा बोध पा छादन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गृही ना उदासा

नाम मन्यादर सच्च सच्याराजता जो पुराणाय अंतर ज्योत अपारा सच्चा सायक तो हर जगत वणजारा श्लोक महला पहला मेर मसीत सिदक मुसल्ला हक लाल कुरान शर्म सुन्नत।

मान प्रीत सुत दारा तद प्यास आस राम लिव लावै नानक साचा मन वसै साच शबद हर नाम समावै पौड़ी राजे रयत सिखदार कोई न रहसियो हट पटन बाजार हुकमे टैसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर परे भंडार रीते एक खड़े ताज

पहला एक मास हार एक तृण खाए एक ना छत्ते अमृत पाए एक मिट्टियां मैं मिट्टियां खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक

कूड़ मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कै चढ़िया हो पाल विकुनी होई अंधेरा रान कोई बच होमे कर दुख रोई कौ नानक किन बदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चन संसार गुरु कोई उतरे पार जिसनु नदर करे तिस देवे नानक गुरमुख रतन सोले वै पौड़ी भगता तैसा सारिया जुड़ कदे न आया करता आप भुल है न भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन सचो सच कमाया सहसारे आप खोआयन जन कूड बोल बोल बिख खाया चलन सार न जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करण हर चाकरे जिन अंदर नाम त्याया दासन दास होए कै जिन विचो आप गवाया उन्ना खसमै कै दर मुख उजले सच्चा शब्द सुहाया श्लोक महला पहला सबाही सला जिनी त्याया एक मन

नानक ते मुख उजले होर कहती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुरु दस्या सच्चे ही पत्याए सच विगसिया

महला पहला सुन का बिरख पत परवाला फुल जवेहर लाल तित फल रतन लगे मुख पाखत हृदय हृदय निहाल।

नाही भेद बुझिया पावना खड़ दर्शन कह भेख किसे सच संभावना सचा पुरख अलख शब्द सुहावना।

करते वसे दिन कल रखे तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कलम कमल विगसया खसम पूरा पाए मनोरहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया सचा सतगुरु सेवन सच मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वे दस्या ढाडी कथया कत शब्द सवारिया नानक गुण गाए रास हर जीव मिले प्यार।

नानक बख्शे बख्शिया है नाय तपाही पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छाड मंगिए सुख सुख दुख दो दर कपड़े पैरे जाए मनुख जिते बोलन हारिए।

सो जन तरे जो दासन दास जन नानक नाम ध्याया गुरमुख प्रगास गौड़ी बैरागण माला चौथा नित दिन सो रात लालच करे परमे परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर भारी उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो घर कै कामार लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया घर कै काम लाए नित हर गुण गावे अर नाम समाए रा नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कहे बंदे कह डाण लै कह नरपत मर जाया धन धन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बव भांत कर माया कहताई जा लाहा दे ता सुख मने तोट मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गोर आगे जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा अमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चेत हर बहुत प्यारा हों कुरबानी तिंगुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी सरन परे हरिद्वार मद निर्गुर हम मेले कबू अपनी कृपा धार राव हमरे अवगण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत नया वे तू गुणदाता हर हर दयाल हर आपे बख्श लय हर भावे हम अपराधी राखे गुरसंगति उपदेश दियो अरनाम छुड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विसम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छुड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधव मेरा सखा सखाए जो हमरी बेदोती मेरे सतगुरा साबिद तुमर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुरु सतगुर संग कीरे अम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलै चूके सब सुख संतापे गौड़ी बैरागण माला चौथा कंचन नारी मैं जियो लुभत है वो मीठा माया घर मंदिर घोड़े खुशी मन अन रस लाया हर प्रभ चेतन आवे क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम नीच कर मर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्शव गुण सब मेरे राव किश रूप नहीं किश जात ना ही किश ढंग ना मेरा क्या मोह लै बोले गुण बिहून नाम जपया ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया।

किसी का किछ हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिर ताप, सब हर के वस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। जै ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो जन, नानक जो अंति अवसर लै छुड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिनस जाय। हर परम पद लइए मेरा सतगुर प्यारा, कित बिद मिलाए। हाउ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिलाए राउ। कर किरपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा, इछ पुनी जन केरी आले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावे हर भगत, हुन सुनै नित सत तिस सतगुर मिलिया। तोता मूल न आवे अर लाभ नित दड़िय, जिस कोर दे विगास है भाव दूजा नाही। नानक तिस गुर मिले उदरे हर गुण गावे। महला चौथा गौड़ी पूर्वी, हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरे मन तन मुख हर बोली। गुरमुख रंग भयात गूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर सेती मन म्या जब

त्यों मनमुख गर्भ गुलाडे आम जानिया कछु न जाने आगे ज्यो हद दाखे त्यो ठाडे आम भूला चूका गुर कृपा धारो जन नानक उतरे काढे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करो नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर दे मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर नंडौत पुन वड्डा है रहा साग तारा साधना जाने आतने अंतर हमें कंडा है ज्यों ज्यों चला चुबह दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर नाम समाने जोग जन्मरण पव खंडा है बनासी पुरख पया परमेश्वर बसुभ खंड ब्रह्मंडा मंगरी मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठार दीन दयाल अनुग्रह की आर गुर सबदी चख डीठा राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा राव हर अगम्या गोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुर लाग बसीठा जिन गुर बचन सुखाने ही रहे तिन आगे आन परीठा मनमुख ही रात कठोर है तिन अंतर कार करीठा विसियर कौब दूध पियाये बिख निगसे फूल फुलीठा हर प्रभ अन मिलाव गुर साधु घास गरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी माला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दड़ाया मुख मस्तक भाग सुभाग।

बचन हर पाया राव मेरा ही हराय प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे जन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुरु हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद भया मन मोरै गुरु आगे आप विचाया मैं अपराध पाप कीने गुर तुष्टि कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे वडभागी गुर दर्शन पाया धन धन गुरु लिव लावे गुरमत गुरमुख हर लिव लावे राव हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कुमावे हम मल मल धोवे पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जेवार गुण गावे मन रसक रसक हर रस अकाने फिर बहोर ना भूख लगावे कोई करे उपाव करे अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम ना पावे जन नानक कवर कृपा धारी मत गुरमत नाम दुर

चौधरी मेरे गोविंदा चौधरी मेरे प्यारे हर ब्रह्म मेरा चौधरी जी और आपे कानो पाएदा मेरे गोविंदा रे आपे गोपी खोजी जी और आपे सकट भुगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जी और सजाना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जी और आपे जगत पाएदा मेरे गोविंदा रे आप हर आप खेले बहु रंगी जियो एक ना भोग भुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नंग नंगी जियो आपे जगत पाएदा मेरे गोविंदा अरदान देवे सब मंगी जियो भगता नामे उदार है मेरे गोविंदार कथा मंगे यार चंगी जी और आपे भगत कराएदा मेरे गोविंदार भगता लोचमन पूरी जी और आपे आपे जलथल वरदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जी और अंतर बार हर अंतर बार आप है मेरे गोविंदा रब रहा भरपूरी जी हर आत्म राम।

तेरा नाम सकार पाई दियो, हर गुण गावो संत दियो, मेरे हर प्रभ के रे जियो, जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो, हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर सबदी पाई हर प्रीतम राहो जियो, बड़भागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन बडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ आसा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरी अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मैं मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़े मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, और नाम मिटो हौ नाम मिटो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो, गुर सरदा पूर मुख अमृत पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो, जन नानक रस पाई जियो, महला पंजवारा गौड़ी गुवारेरी चौप दे को अंकार, सतगुर प्रसाद किन बिद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाईये हर राम सुहाई राह, कुशल नागरह कुशल नागरह मेरी सब माया, उच्चे मंदिर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती घोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी होमे का फासा, राज कमावी दै दिस सारी, माने रंग भोग बहु नारी, ज्यों नरपता सुपने पेखारी, एक कुशला मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे स्वर के आ भगता पाया, जन नानक हमे मार समाया, किन बिद कुशल होत मेरे पाई, इं पाई हर राम सुहाई रा, दूजा गौड़ी गुवारी री महला पंजवा, क्यों भरमी है भ्रम किसका होई जा, जल थल मईल रव्या सोई, गुरमुखी उबरै माड़ मुख पात खोई, जिस राखे आप राम दया रा, तिस नाई दूजा को पंचन हारा रा, सब में वरते के अनंता, ता तू सुख सोए हो चिंता, ओ सब किछ जाने जो वरतंता, मनमुख मुए जन दूजी प्यासा, बजूनी भवे धुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन भया विगासा, सब नदरी आया ब्रह्म प्रगासा, जन नानक

राम राम रंग घर बार तेरे सद संग्रह तिस की टेक मने में राख गुर का शब्द अमृत रस चाख अवन अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानो कहो क्या रोजोर झूठा माया का सब सोर कर्ण करावन हार स्वामी सकल कटां के अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा हो गुरु उपदेश मने में ले हो जाकू राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वडभागी गौड़ी गुवारे री माला पंजवा सोनार कथा उतारी मैल मां पनीत भय सुख सैल वड्डे भाग पाया साध संग पर ब्रह्म स्यो लागो रंग हर हर नाम जपत जन तारियो अगन सागर गुर पारियो तारियो राव कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के केल विख गए सरबन दान पेखे मन वाहे अब ढूंढन काहे को जाहे प्रभ अपने जा भय दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट की अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणदास एको मान एको सब ठाए पूर्ण पूरे सब जाए गुरपुरे सब भरम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुवारे री महला पंजवा अगले मुए से पाछे परे जो उभरे सो बंद लक खरे जय धंधे मैं ओहे लपटाए उन ते दुगुणा दिड़ी उन माए ओह बेला कछ चीत न आवे ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਛ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ ਬਣਸ ਜਾਏ ਤਾਹੂੰ ਲਪਟਾਵੇ ਰਵਾਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇ ਸਰੀ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਿਆ ਖਾਏ ਹਉ

का नाम उधार सर्व आवत पूरन तनी जा की शोभा घट घट बनी जे सिमरत दुख डेरा टहे जे सिमरत जम कछु ना कहे जे सिमरत होत सूके हरे जे सिमरत डूबत पान तरे संत सभा को सदा जयकार हर नाम जन प्राण उधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मुको नाम निवास।

साध संग हर की गुण गाया राव। चरण कमल हृदय अंतर तारे अगन सागर गुर पारे उतारे। बुढ़द जात पूरे गुर काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानका तिस गुर बलहारी जिस भेड़ गद पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा सा संग जांकी सरणी परो। मन तन अपना आगे धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई। सिमर सिमर सब तब तु बुझाई राव। ताजी अभिमान

गुर गुण तासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए इच पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ सात शीतल पै कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पै सुहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रा सिमरता सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिन सिया थाओ सहज सुभाए बोले हर बाणी आठ पैर प्रभ सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ने आवे कौ नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा भले दिन स भले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म नर जोग बेला को हौ बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नावरा सफल मूरता सफल ओ करी जित रसना उचरै हर हरी।

दुख सुपने भी नाही राव। सर्ब निधान राखे मन माहे, ताके सांग किल बिख दुख जाहे। जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए। कर कृपा प्रभु सुनीजे, दास की धूर नानक कौ दीजै। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए। सर्ब कल्याण वसे मन।

आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से भय निहाल, कहो नानक गुर भय है दयाल। गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी के लवेख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जपत सब मिटे अंधे सारा, साध संग कछ पाओ ना पराती, गुण गोपाल गाइये दिन राती, कर कृपा प्रबंधन छोट, चरण कमल की धीनी ओट।

कर ऊटा जन्म मरण ते उबत छोट राम। सो तन निर्मल जित उपजे ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, सा संग मिट जात विकार, सब ति उचे उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचे साधुवाल। गौड़ी माला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लहे पूरन वड भागीरा।

जय ठाकुर भावा गीत चित प्रभु के गुण गावा शरण परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा ना जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरै इस मिठी ते इहो मन हो रै रहाओ अज्ञानी मनुख भया जो नाही सोलो रै रहण अंधारी कारिया कवन जुगत जित भोरै भ्रम तो हारिया अनक विधि कर ढोरै कहो नानक कृपा पाई साध संगत निध मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करुणा मय रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जा कै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोल सुनत जसो कोट अग खय कृपा निध प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरै प्राण सुखदाता सो दिन जात अजाय रहाओ एक रहण के पाहुन तुम आए बहु जुग आस बधाए गृह मंदिर संपै जो दिसै जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवन हारा बिसरियो ठाकुर खिन मैं होत पराए पहरे बागा करे सनाना चुआ चंदन लाए निरपो निरंकार नहीं चीनिया जो हस्ती ना वाए जो होए कृपाल ता सतगुर मेलै साब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गोर गोर गुर सद करिया रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिया रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो होए दयाल सतगुर अपना ता एह मत बोध पाइए मेरे मन नाम लए जम बंध ते छूट हे सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंशत फल पाई मन बंशत फल आइए नाम इष्ट मीत सुत करता मान संग तुहार चल करके कर सेवा सतगुर अपने की गुर ते पाई है चपाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेसा राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तृष्णा बिरले ही की बुझी हे रहाओ कोट जोरे लाख रोरे मन न होरे परै परै ही को लुजी हे सुंदर नाने सुंदर नारी अनक परकारी पर गृह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनेक बंधन माया भरमत भरमाया गुण निध नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी हे जा कोरे कृपा करै जीवत सोई मरै साध संग माया तरै नानक सोजन दार हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहु को रास हार हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू

बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जहर चो तै तै बंधन पाहे जे बिद कतु ना छुटिए सागत हुक्माए हो करते कर्म न ताको भार अपार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो यू कर्म विकार अबादे जम की जेवरी मीठी माया रंग परम के मोह

भाई हो वैसो होए करना है, हार पछाण है सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सात ऐसा दृष्टाना, जैसे ते उपजे ते समाहि समाए, ओए सुख निधान उन्हों बने आए, आपस का आप दिनो मान, नानक प्रभु जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार, जागा समन नो धरिया नानक तस्म लिहार, अष्टपदी टूटे गाढ़ नहार, गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई ना हिरे, मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए, जैसा प्राणी लोचा कोई तिस बिन नाही तिरा किच काम, गात नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है, अत सूरा जे को ऊक हावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए बह दातार, तिस दिन हार जान गावार, जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सो जान सदा अरोग, ज्यो मंदिर का थम है थमन, त्यो गुर का शब्द मन है अस्थमन, ज्यो पा खान नाव चढ़ चाढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरह, जो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, जो महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै, तिन संतन की बाछा तूर, नानक की हर लोचापुर, मान मूर्ख काहे बिल लाइया, पुरब लिखे का लिखिया पाइया, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग दूत सहचितार, जो काछ करे सोई सुख मान भूला काहे, फिर अजान कौन बस आई तेरा संग, लपट रहे रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पद सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताजा विमान लियो मन मोल, राम नाम हिरदे मह तो लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उजल हरदर गह सोए, एह व्यापार बिरला व्यापार, नानक ताक सत बलिहार, चरण साध के धोहे धोहे पियो, अर्प साध का अपना जियो, साध की धूर करह स्नान, साधु उपर जागिया कुरबान, साध सेवा वडभागी पाइया, साध संग हर कीर्तन गाइया, अनक बिघंते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै, ओट गही संत हैदर आया, सर्ब सुख नानक तेह पाया, मृतक कौ जीवालन हार, भूखे कौ देवत आधा, भूखे कौ देवत आधार, सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिहे का लहना पाहे, सब किछ तिसका ओह करना है, जोग तिस बिन दूसर हुआ न हो, जाप जान सदा सदा दिन रहणी, सब ते ऊच निर्मल है करणी, कर कृपा जिसका नाम दिया, नानक सो जान निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जान आवे हर प्रभ जीत, भगत भगत सुनिया तेह लोए, जा कै हिरदा एको होए, सच करणी सचता की रहत, सच हिरदा सतमुख कहत, सच दृष्ट सचा आकार, सच वरता सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र हो, गुण ते प्रभ भिन्न ते सह बुझाए, नानका जिस हो वै सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख, मन की तू प्री त्याग, तिस्ते परह नाही किछु कोय, सर्ब निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बखसंद, साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अन राओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाना होर, आनंद रूप मंगल साध जाका, सर्ब थोक सुनिया है करता कै, राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, गृहस्थ मह भोगी, त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाह, सगल देव हारे अवगाह, पिता का जन्म के जाना पूत, सगल परोई अपना सूत, समत ज्ञान ते अंजन दे, जान दास नाम ते आवह से, तेहो गुण मह जाका परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए, ऊंच नीच जिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह एक रंग, नाना बिद किनो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहे पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरित वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उधरे संसरवन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जान गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मल, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजां जाकर हृदय प्रवेश, सत नित बुझै जे को, नाम जब ताकी गत होए, आप सत किया सब सत आपे जाने, अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवर न बुझ करत विचार, करते की मित न जाना किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मात, जिन बुझै तिस आया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै पचन पदार्थ लहे, ओ दाते दुख कटन हार, जा कै संग त्रै संसार, जन का सेवक सोवड़ भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आदि सच जुगाद सच है, भे सच नानक होसी भे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत वेखनहार, नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भगता, सुरत सत सत जस संता, भुजनहार का सत सब हो,
ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ।